0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspire 105.1 FM.
2: I have whiz.

0: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: I have

0: ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
1: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: आपने थॉट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है, रिश्तों के साथ भी ऐसे ही करना होता है, बिजनेस में भी ऐसे ही करना होता है। मैं पीछे हट जाता हूँ, और उस वक्त मैं कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करने से, कोई भी बात करने से, कोई भी चीज़, क्योंकि अब जजमेंट क्लाउडेड हो गई है, अब मैं उसको उस तरह डील नहीं कर पाऊंगा, तो पीछे हट जाएं। तो जितने भी मेरे दोस्त मेहरबान लोग होते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, जब सोच के गुंजल बनने लगे, या आप गोल गोल घूमने लगे, या आपको लगता है कि अब मैं थक गया हूं, या गलत मुझसे काम हो जाएगा, तो दो तीन चीज़ ना किया करें। एक तो फैसला कोई ना किया करें, दूसरा मुंह से अल्फाज निकालने से पहले, कोई ईमेल सेंड करने से पहले, कोई वॉइस नोट करने से पहले, किसी चीज़ पर साइन करने से पहले, किसी अपने दोस्त को जिनसे आप इज्जत प्यार करते हैं, जिनकी आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है, उनको कॉल बिल्कुल मत करें। उनकी किसी बात पर इरिटेटेड ना, फिर भी आप उनको तंग ना करें, पीछे हटकर टाइम दें। आपको लगेगा ये जैसे ही इम्पल्स उतर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, परेशानी, इरिटेशन बैठ जाएगी, आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर होगा। फिर जब आप इस चीज़ को एंगेज करेंगे, तो टोटल डिफरेंट एनर्जी के साथ करेंगे आप। ठीक है हीरा सिंह जी?
2: अक्सर कहते हैं ना, अगर आपके किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको फिक्स कर लिया है, और यू शुड कम ऑन द एयर एंड टेल द अदर लिसनर्स हाउ यू डिड इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट। नाउ आई टैकल माय प्रॉब्लम्स, आई डोंट टैकल देम ऑन द स्पॉट, आई स्टेप बैक एंड गिव मायसेल्फ समथिंग प्रोडक्टिव टू डू, समथिंग आई एम गुड एट, लाइक आई एम गुड एट मेकिंग कॉफीज, आई एम गुड एट मेक कुकिंग। मैं कुछ भी अपने आप को कुछ अलग टास्क देके, देन आई गेट बैक इनटू इट एंड आई सीन द रिजल्ट्स। आप इतने अच्छे और इतने बढ़िया फैसले लेते हो, और सुकून के साथ यू कैन सिट बैक दैट यू टेकन दिस डिसीजन फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड एनीवन अराउंड यू। बहुत अच्छा महसूस होता है, और अंदर से जो मोस्टली हमारी जो प्रॉब्लम है, खास करके देखते हैं कि वी फोकस ऑन व्हाट वी आर मिसिंग, जो हमारी जिंदगी में लैक है ना, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड इट गिव्स मी सो मच न्यू perspective, and what abundance of energy to focus on and other things.
0: आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं बहुत ज्यादा किसी चीज पे कोशिश, अभी मैं एक दो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो वो बिल्ड अप हो रहा है प्रेशर, क्योंकि क्रिएटिव काम है, लिखने का काम है, फिल्म का काम है, स्टेज प्लेस का काम है, अब वो हो नहीं रहा 3-4 साल से, और वो कोविड के बाद से सब कुछ ही उलट गया है, इवन यू नो स्लीप साइकिल से लेके बहुत सारे जो काम थे, और फिर उसको ग्रिप करने के लिए मुझे साल एक लग गया उन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो मैं जब भी, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिस पर मुझे लगता है अब ये काम हो जाएगा, और वो काम नहीं होता, तो एक आध मिनट या एक आध घंटा या कभी कभी एक आध दिन लग जाता है उसमें से बाहर निकलते हुए, लेकिन उसमें निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अच्छी सी चाय पीते हैं आप, अच्छी सी गप लगाते हैं आप, अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी सी मूवी देखते हैं, आराम से सोते हैं, और साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था वो अगर नहीं मिली, तो मेरे पास है क्या क्या, किस किस्म के लोग हैं मेरे पास, किस किस्म के एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं मेरे पास, और किस किस्म की इज्जत प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है मेरे पास। एक चीज़ नहीं भी हुई तो क्या होगा, दोबारा कोशिश कर लेंगे, फिर कभी हो जाएगा, इसके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और वो वाली बात, पंजाबी तुसी आदमी हो, पंजाबी वितन दसना, अपना रंजा राजी रखना बहुत ज़रूरी है। रांझा जब नाराज हो जाता है ना, तो हीर जो है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका रांझा है ना वो आपके अंदर रहता है, तो जब वो थक जाता है, फंस जाता है, इरिटेट हो जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो उस रांझे को राजी रखने के लिए, उस रांझे को, सोने को जो चीज़ पसंद है उस पे ध्यान दें, जोर मत लगाएं उसके ऊपर ना। और ये बाहर के लोगों के लिए भी है, जब भी आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, کسی مقصد سے محبت کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے کسی مقصد کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں، کوئی زندگی میں ایکسلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا انسان ہے یا انوائرمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس پہ زور لگانے کی کوشش مت کریں. ہم زور جب جم میں بھی لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توڑ بیٹھتے ہیں، رشتوں میں بھی جب ہم بہت زور لگاتے ہیں، بے شک آپ صحیح ہوں، بے شک جو آپ چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کے حساب سے، لیکن فری ول رب نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی ہر انسان کی زندگی میں، اس کو دے دی اس نے، جس سے اس پوری دنیا کا ڈرامہ، یہ پوری دنیا کی فلم، یہ پوری دنیا کا اتار چڑھاؤ صرف ایک فری ول کے اوپر ہے. اور اگر آپ نے زندگی میں اپنی فری ول اپنی پہ آپ کام کر سکتے ہیں، دوسرے کے اوپر آپ اس کو فری ول کا حصہ بنا کے آپ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ رسپانسیبل ہیں اور وہ رسپانسیبل نہیں ہے یا وہ اور طرح سے کوئی پرسنالٹی ہے، تو یہ کام ہمیشہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. ایک اور بات یاد رکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ زہم بھی ہے، یہ کیڑا بھی ہے کہ ہم انسانوں کو ٹھیک کر لیں گے، یا کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو دیکھیں جی وہ انسان نے آپ سے محبت کیا، اس نے میرے لیے یہ چھوڑا وہ چھوڑا، یا انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں دیں، تو اب میں اس انسان کو جو ڈیمیجڈ ہے، چاہے لیڈی ہیں کوئی چاہے کوئی جینٹل مین ہے، تو اب انہوں نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا ہے تو میں اپنے آپ کو، یہ ایک ایگو بوسٹ بھی ہے اور یہ کوئی نہ ایک ریکگنیشن ہوتی ہے کہ میری خاطر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، یاد رکھیے گا. اور اب میں ان کا ساتھ دوں گی یا ان کا میں ساتھ دوں گا، وفا کروں گا، اور اب میں کسی ڈرگی سے اس کی ڈرگ چھڑوا دوں گا، یا میں الکوہولک سے اس کا الکوہل چھڑوا دوں گا، یا میں کسی ایک ٹیمپرمنٹل آدمی سے، اور جو اس کے بہت سارے اور ہاتھ چھوٹ آدمی ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں، اس آدمی کو ٹیم کر کے میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا ٹھیک کر لوں گی. یہ 100% وہ بیٹل ہے جو آپ ہاریں گے، بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ دی ادر پرسن، اٹس یو آر فائٹنگ اگینسٹ اے نیچر، اے سیریز آف ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان دیٹ پرسنز لائف، the reaction of that person towards the action that has happened to him, uska sochne ka tarika, usko cheezon ka deal karne ka tarika, uski weakness aur uska ek jo puri zindagi 40 saal mein ya 30 saal mein ya 26 saal mein ya 50 saal mein bani hai, ya koi aisa dost aapko mil gaya jisko lagta hai aap usko fix kar denge. You cannot fix human beings unless they want to fix themselves, and when they are doing that you can just be a supporting role in their life, not the pivotal role or not the lead role in their life. Kisi bhi insaan ne agar ye galti ki 10 20 30 40 50 60 70 saal ki zindagi aap zaya kar sakte hain, but ye kabhi nahi hoga, kyunki ye free will ka jo rab ne ek cheez banayi hai uske mutabik insaan aahista aahista مجموعہ ہے، وہ ایک جرنی ہے پورے کا پورا جو ابھی آپ کے پاس آیا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بچا لیں گے، یا کسی لیڈی کو لگتا ہے کہ آپ ان کو بچا لیں گے. اس کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، آپ نے خود جو کیا ہے، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، اپنے پور امپلس کنٹرول کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اگر آپ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کسی چیز سے، سبسٹنس سے لے کے انسانوں سے لے کے انوائرمنٹ تک، وہ بھی اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بھی آپ کا اپنا طریقہ کار اور آپ کا یہ کام ہے. جتنے لوگوں کو یہ گاڈ سنڈروم، ایک انسان ہوتا ہے کہ جی میں کلاسک فکسز ہوتے ہیں سائیکالوجی میں، جو مسئلے لے کے ان کو لگتا ہے کہ وہ فکس کر لیں گے، ایک حد سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، فیملی ہو، چاہے بلڈ ریلیشن شپ ہو، چاہے سینٹیمنٹل کوئی لو کے ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں، اس میں بھی ایک حد سے آگے وہ تو ڈوبا ہے، آپ کو بھی ڈبوئے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ کام اپنا اپنا کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی سپورٹنگ رول میں ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ لیڈ رول کا اپنا ایک کام ہے، جو اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، فائنینشیل ہیلتھ ہے، اپنی مقصد کی اس کی زندگی کی جو ہیلتھ ہے، یہ تمام اس کے اپنے مسائل ہیں، اور اس میں سے وقت نکال کر، ٹائم نکال کر، اپنی انرجیز ریسورسز کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن ایک حد سے آگے نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کام کا بندہ بھی آپ برباد کر دیں گے ایک ناکام یا ناکارا بندے کے ساتھ ساتھ. جو ڈیمیج گڈز ہوتے ہیں ان کو ایک حد تک ہی تھوک تھگڑی لگا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ان کی جو کریکنگ ساؤنڈ ہوتی ہے یا ان کو جو دیمک لگ جاتا ہے وہ ایک ریئلٹی ہے. اس کی جو اس کے اوپر، اس کرسی کے اوپر، اس صوفے کے اوپر، اس میز کے اوپر بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو کتنے دھیان سے بیٹھتے ہیں، اور ایک دن دھڑام سے وہ گر جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب تک اس اور پوٹینشیل پہ نہیں جانا ہے، ایک اور بیماری ہم لوگوں کو بہت ہے، ہم میں بھی تھی اور بھی لوگوں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم بندہ پھنس بھی جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس انسان میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ انسان کو بہت بڑا کمال کر سکتا ہے، یہ لیڈی جو ہے لکھ کر کر کے، یا اس کے اندر ایسی زبردست خاصیتیں، خصوصیات ہیں کہ ایک دن یہ بن جائے گی. رشتے फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते रिश्ते, किसी भी किस्म का रिश्ता प्रेजेंट में बनेगा। प्रेजेंट में आप जो ऑन टेबल लेके आ रहे हैं, जो आप हैं, उसकी बेस पे डील बनती है। एक कंपनी जब आप खरीदते हैं या उससे मर्ज करते हैं तो इस वक्त उसकी जो नेटवर्थ है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप उसको पे करते हैं या उसको आप ब्लेंड इन करते हैं अपने साथ। उसकी 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ये चीजें उस वक्त नहीं, आप इसकी वर्थ के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन ये सब इस वक्त की वर्थ के ऊपर करना है आपने। हम में से बहुत सारे लोग इंसानों में, रिश्तों में ये गलतियां करते हैं कि जी इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकती है। बिल्कुल नहीं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। 20% भी करेंगे तो क्लैरिटी में क्या करेंगे, 80% बेशक ना करें, लेकिन डील सिंपल और क्लियर होती है। और जैसे ही उनको वो चीज मिल जाती है, आपने देखा है जिस दिन कागज पे साइन हो जाता है उसके बाद लोगों की सोचें बदल जाती हैं, जहन बदल जाते हैं, और वो जो जिस चीज के लिए मर रहे होते हैं जब वो चीज हाथ आ जाती है तो वो टोटली और लोग हो जाते हैं। इंटरेस्ट इंटैक्ट कैसे करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को बढ़ाना कैसे, अपना रोल को डिफाइन करके उसको एक्सीलेंस पे कैसे पहुंचाना है, कैसे रुकेंगे इस बात से कि दूसरे के 80% या 70% या 30% या जो 50-50 की डील हुई थी उसमें जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ बिजनेसेस किए, कितने लोगों के साथ मेरे हर किस्म के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टामक टोइयां मारता है और उस बदबख्त को इतना भी नहीं पता होता कि चलता फिरता बिजनेस, फलता फूलता हुआ रिश्ता या बिजनेस या कोई भी चीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस में जब आप होते हैं और कंट्रोल चाहते हैं उन चीजों का, और कंट्रोल के बारे में भी याद रखिएगा, कंट्रोल सिर्फ उस आदमी को सूट करता है जो कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है या इतनी अच्छी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है उस घर की, उस सिस्टम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस बंदे या बंदी को कंट्रोल दे दें, बिकॉज उस काम के साथ डेडिकेटेड है और उसमें वो रिजल्ट ले आया है। लोग आपको कहेंगे कि आप हेड बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप इस कंपनी के फलां रोल जो है वो आप ले लें। कम्युनिटी में लोग आपसे कहेंगे कि क्यों आप क्यों नहीं ये बन जाते, आप क्यों नहीं बन जाते, आपके पीछे आते हैं। और जो लोग कहते हैं ठीक है देखेंगे समझेंगे, इसके साथ ये तमाम चीज़ें हैं, फिर ये मेरी कंडीशंस हैं, ये अगर आप पूरी करते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग भी कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, या उनको ये पता होता है कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो चाहता, या तीसरा बंदा, चार लोग भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। जो आदमी भी कंट्रोल चाहेगा ज्यादातर वो डिजर्व नहीं करता। और कौमों का भी यही अलमिया है कि ये सॉरी अलमिया है कौमों का भी यही लफ्ज भी उतने सालों में आपने यूज नहीं किए होते ना, तो कौमों का अलमिया भी यही है, आयरनी है ये। और इसी में इंसान, बहुत सारे लोग जो पावर चाहते हैं वो उस पावर के काबिल नहीं होते। तो घरों में भी यही है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है, और ज़िंदगी में भी यही है। और जब भी आप ज़िंदगी में ऐसे लोग और ऐसे काम देखें तो मेरा बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आई जस्ट स्टेप आउट, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टू मच टाइम एंड एनर्जी। जब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 25-30 साल करते करते, उसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं है और जो आपकी जगह है वो नहीं बनती, तो लड़ाई झगड़े अदालतें हैं, टाइम ज़ाया, दुनिया में इतना वक्त नहीं है। उधर एक अदालत है, उसमें भी अच्छा खासा मामला खड़ा होगा वहाँ पर। ये दुनिया की छोटी मोटी मसाइल, छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे कागज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी हलकान करने के बजाय एमिकेबल तरीके से आप चीज़ों को डील करें। जो भी लेना देना है वो दें, नहीं कुछ मिलता है तब भी जाने दें, आगे जो आप चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, आप एसेट हैं, आपकी सोच एसेट है, आपका काम एसेट है, आपके मिलने मिलाने वाले लोग खुद कहीं ना कहीं से चीज़ बन जाएगी जो 25-30-40 साल की जिंदगी आपने गुजारी है। जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश। डरे मत जिंदगी को बार बार फ्रेश स्टार्ट करने से। मैं 3 दफा स्टार्ट कर चुका हूं, 4th दफा स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा जिस डेकेड में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कहीं नहीं जाता ये सब कुछ। जो कुछ भी आया, साथ लेकर नहीं आए थे पैसे, साथ लेकर नहीं आए थे पावर, साथ लेकर नहीं आए थे ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत, ये सब अलोंग द वे आपको मिली है। देने वाले ने ये दिया है, वो आगे और भी देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेट इट गो, और फिर आप देखें कैसे चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे ही आप चीज़ें छोड़ के पीछे बैठेंगे, आप देखें सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। और फिर गालिब ऐसे नहीं कहते, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे, यानी कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे, और रोज़ मेरे आगे ये सब तमाशा होता रहता है। जानने वाला जानता है بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے. ٹھیک ہو گیا سر؟
2: I can't wipe the smile off my face.
0: شروع کہاں سے ہوئی تھی، ختم کہاں ہوئی؟
2: کوئی بات نہیں سر،
0: آپ کو بور کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اس کا ایک ایسا کلپ بنانا جس سے بہت سارے اور لوگوں کی بھی آسانی ہو اور وہ بھی شیئر کر سکیں، یہ بیسیکلی ہمارا مقصد ہے. اور کبھی کبھی کیونکہ آپ کی جاب آج کل ایسی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن اب ہم کو یقین ہوا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے مزہ چکھ لیا ہے.
2: بالکل، اور یہ مزہ ایسا ہے سر، ابھی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، آپ سے سننے میں نہیں نا، میرے پورے پورے I was getting goosebumps all over my body like in a good way. مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا
0: ہے. Once you are connected with truth, when you are connected with reality, when you are connected with the source of energy, and that is coming from you, from the audience, and the kind of love, care and respect we have for this platform, اس کے اوپر جو بھی بات کی جائے گی لوگوں کو اس کی انٹینشن کا پتہ ہے، لوگوں کو اس کی انٹینٹ اور جو کانٹینٹ ہے اور اس کے اندر جو ہماری کنٹینٹمنٹ جو اس سے ہمیں مل سکتی ہے اور آسانی پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وانس یو آر یو نو کائنڈ ان ٹچ ود اٹ، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا کنیکشن، یو بلڈ اے کنیکشن ود اٹ، سو انرجی کا فلو ٹرانسفر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں، یہی آپ سننا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو کبھی کہی نہیں گئی، کبھی سنی نہیں گئی اور کبھی بولی نہیں گئی، اور اگر یہ وقت پر ہو جاتی تو ہم اب تک ہمیں پر لگ گئے ہوتے اور ہم اڑ رہے ہوتے بجائے اس کے کہ ہم رینگ رہے تھے.
2: سر ابھی میں I'll just ask you one last question and I'll confidence and decision making, what's the correlation?
0: دوبارہ پوچھئے.
2: Confidence and decision making, ان میں کیا ریلیشن ہے؟
0: دیکھیں دو تین چیزوں کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک درخت جیسے لگا ہوتا ہے نا، اس کی ایک روٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک سٹیم ہوتی ہے، سٹیم کے اوپر پھر برانچز نکلتی ہیں، برانچز کے بعد پتے آتے ہیں، پھل پھول آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول نکلتے ہیں، پھر اس سے پھل بنتا ہے، پھر وہ جھڑتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ جو ٹری آف لائف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسے سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو یہ کوسچن کانفیڈنس اور ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے، کانفیڈنس اور ڈسیزن میکنگ جو ہے، ڈسیزن میکنگ ایک پروسیس ہے، کانفیڈنس ایک ٹول ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہوگا. اور بھی بہت سارے ٹول ہیں، ایکسپیرئنس زندگی کا، کلیئرٹی آف مائنڈ ایک اور ٹول ہے، آپ کی فائنینسز ایک اور ٹول ہے، آپ کے ریسورسز ایک اور ٹول ہے، آپ کے ریلیشن شپس وتھ پیپل یہ ایک اور ٹول ہے. یہ سب چیزیں جب ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ انف ٹو میک اے گڈ رائٹ ڈسیزن. اس کے علاوہ آپ کا بائسڈ نہ ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے، آپ کا آبجیکٹیو ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے، آپ کا ڈو یہ اس ٹائم کے اوپر کس وقت آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں، اس ڈیسیجن کے پروز اینڈ کونس کون سے ہیں، اس کے پیکج ڈیل میں آپ کتنے ریئلسٹک ہونا ایک اور ٹول ہے، کہ کتنے ریئلسٹک ہیں آپ کے اس وقت جو بھی آپ جس سچویشن میں ہیں، جس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آپ گزر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جب آپ فیصلہ لیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور اس میں ایک چیز اگر آپ ڈال دیں گے تو قدرت کا وہ قانون آپ نے ٹرگر کر دیا جس کا فائدہ ہو ہی ہو. یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی انٹینشن کیا ہے، اگر اس میں دوسرے بندے کی یا دوسری پارٹی کی بھلائی اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ نے قدرت کا قانون ٹرگر کر دیا، دوسرے کی بھلائی سوچ کر ایسے ڈیل کرنا کہ اس کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، اور رشتے کا بھی فائدہ اور انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ڈیل نہیں. تو یہ چیزوں کی کو ریلیشن بھی اس وقت آ گئی، اور ساتھ ساتھ آج اب جنہوں نے یاد کرایا تھا شناز جی نے بہت ہی اچھا ٹریک، تو یہ وہ راستہ ہے چلنے کا، آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے چلنا ہے، سٹر کریٹ نہیں کرنا ہے خام خواہ کا، طوفان چائے کی پیالی میں نہیں اٹھا کے کھڑا کر لینا. جب کہیں جانا ہے تو تیاری کے ساتھ اپنے صحیح موقع کا، صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، پھر وہاں پر وہ چیز کرنی ہے اور وہ چیز نکالنی ہے، وہ چیز دکھانی ہے جس کا وقت آ گیا ہے. اپنے وقت پر آیا ہوا آئیڈیا سب کچھ ہے، اسی کو پیٹنٹ کر لینا وہ ایک اور بڑا کمال کام ہے. سو یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور یہ سب سلولی اینڈ گریجولی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہمیں بہت جلدی زندگی میں چاہیے تھی لیکن اس کا وقت نہیں تھا، اس کو پانے کے لیے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے، کچھ غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں بلنڈرز ہوتے ہیں، जो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर समझना है कि ज़िंदगी में आप गलतियां ज़रूर करें, क्योंकि उससे आप सीखेंगे, समझेंगे, और उसमें आपके अंदर डेप्थ पैदा होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड पैदा होगी, व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट क्लियर आपको होगा। लेकिन जब आप बिना देखे जज्बात में, बिना सोचे समझे, दूसरों की देखा देखी, किसी के डर से ब्लेंड इन करने के लिए, किसी की तरह बनने के लिए आपने वो डिसीजन ले लिए जो आपकी नेचर के अगेंस्ट हैं, या जो आपकी वीकनेस है वो उससे बाहर निकल के खुल के सामने आ गई, तो उसको ब्लंडर कहते हैं। और वो ब्लंडर्स जो हैं, फिर जब आप उसमें से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे, और उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो ये ज़रूर आपने सोच लेना है कि मिस्टेक्स करें, क्योंकि पुरानी गलतियाँ क्यों करनी, और गलतियाँ नहीं करें क्योंकि गलतियों से आदमी सीखता है। तो बार बार एक गलती जो सीख रहा है उसका मतलब यू नो डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज़ कॉल्ड इनसैनिटी। ये जुमला जिस दिन मैंने पहली दफ़ा सुना था वो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी इस जुमले को सुन के, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रख के कसौटी में ये चेक किया था कि यार ये कितना मैंने किया है, और फिर सब बदल गया था। और मेहरबान थे वो भाईजान जिनके मुंह से ये अल्फाज निकले और लोगों तक पहुँचे, आइंस्टाइन थे, तमाम मेहरबान लोग जिन्होंने पहले आवर में बहुत घमसान का रन पड़ा जी, बहुत मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस और पॉइंट्स ऑफ व्यू आए। उम्मीद करते हैं इससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के गोश गुजार हुई होंगी। बीच में बहुत सारा अपनी अम्मा का हमारा फेवरेट ट्रैक आपने सुना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ना वो उस ज़माने में ना नाक से बहुत सिंगिंग मतलब बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं ना, तो कुछ लोग उनके नाक जो नाक चढ़ा के बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती थी, ये तरन्नुम नाज होती थी, फरीदा खानम थी, उसके अलावा द लेजेंडरी नाहिद अख्तर। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप चेक कीजिएगा इस गाने को, वो नाक के साथ कितना अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं, क्यूट। कोई है जी हमारे साथ रेडियो आज़ाद ही रोने। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम अस्सलाम, आवाज थोड़ी बीमार बीमार है, कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ आजाद लाला, पहले से बहुत बेहतर।
0: अब आप बिल्कुल फिर घोड़े की तरह फिट हो जाएंगी।
3: बिल्कुल सही,
0: कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, कहीं जहाँ चारा नजर आएगा वहाँ खड़ी हो जाएंगी।
3: आपने वो बना भैंस बना,
0: पानी नहीं नहीं घोड़ा का है, हमने लंबी रेस का घोड़ा, जो पानी जहाँ मिल जाता है अच्छा फ्रेश पानी, ग्रीन पैस्चर्स में दौड़ता हुआ लंबे बालों के साथ, यू नो हमने सारा फील भी कर लिया उसको। अभी एक फिल्म आई है उसमें घोड़े का नाम भी आजाद है, वो क्या काला उन्होंने कमाल घोड़ा अरबी कहीं से उठाया है, क्या उसकी उठान है और क्या उसके बांकपन है उसकी,
3: मजेदार। ये कौन सी फिल्म है आजाद लाला?
0: ये फिल्म है, नाम है उसका आजाद।
3: अच्छा ठीक है, नहीं आजाद लाला अब तो काफी बेहतर हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है आजाद लाला, बल्कि मैं सोच रही थी मैंने कहा हम कैसे छोटी छोटी चीजों को जैसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बटन बंद करते भी मुश्किल हो रही थी, चम्मच उठाना भी, मुंह खोलना, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, लाइक जब हम अपनी दिस स्मॉल थिंग्स वी जस्ट इग्नोर।
0: अगर आप सीखना चाहें ना और अपनी औकात जानना चाहें, पिछले दिनों वैसे ही मेरा उंगली ऊपर से ना स्किन कट गई, तो एक तो वो खून बहुत आ रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, तो किसी चीज़ के साथ लग गया तो एकदम, तो वो पे जा ही ना, मैं जितना उसको रोकूं वो करे, फिर खैर मैंने उसको बांध दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोते हुए, हाथ मुंह धोते हुए, वुजू करते हुए, स्विमिंग करते, हर वक्त उसी का ख्याल रहता था। और वो और उसकी जलन भी जानी, क्योंकि वो स्किन का कोई ऐसा पार्ट था, वो पानी गर्म लगे तो चलता था, ठंडा लगाए तो चलता था, तो दो तीन दिन तक ना पता चला कि इंसान, ये कहते हैं जी कुछ दिनों की आग होगी, अरे भाई आग को छोड़ो, थोड़ी सी स्किन उतरी है, हवा पास से गुजरती है तो इतनी तकलीफ हो रही थी। तो यार लोग, हम लोग ना देखते सोचते समझते नहीं है बात करने से पहले, और दुनिया के जहन्नुम में रोज जल रहे होते हैं हम, और उसी की तपिश में लोगों ने क्या किया, अभी तिक्के अपने बना लिए हैं, थोड़े थोड़े तिक्के बना के खाते रहते हैं, लेकिन आग लगी हुई है, अंगार पखे हुए हैं, हवा शवा लगा देंगे, जो ज़्यादा डेढ़ सियाने उन्होंने साथ पंखा लगा दिया कि वो परमानेंट हवा लग जाए, हाथ के भी तकलीफ़ नहीं करना चाहते ना, ताकि यू नो वो ट्रिगर थम नहीं हो, तो जो सारी चीज़ें टेंटनाइट सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की, नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे।
3: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे, लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
0: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
3: बहुत ज्यादा आजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उनको सुनना शुरू किया,
0: वो कैसे थे, बहुत अच्छे शो थे पिछले दो, बहुत ही अच्छे थे।
3: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा तो।
0: वो सुना आपने जिसमें कहा जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूछेंगे आप बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया, वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: from the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
1: This is the national and international news today, Monday, 18th of May, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Hindu order runs India's court declares another medieval mosque a temple. Iran says talks ongoing through Pakistan. It responds to US proposal. UK companies linked to payments for small boat crossings, BBC finds. Waste carrier licenses to be tightened as part of illegal dumping. Tube strike set to go ahead after failed talks. Rai first Englishman to win US PGA Championship since 1919. Early intervention and tougher action against parents to tackle youth crime. And other details. The mosque in the Bodshala complex, a protected monument of archaeological importance, is out of bounds now for Muslims in Dar. The Madhya Pradesh High Court, hearing a petition claiming a temple predated the mosque at the site, ruled on Friday that the medieval complex is a temple dedicated to a Hindu goddess. On Sunday, the 13th, 14th century monument was awash in saffron flags associated with Hindutva, the far-right Hindu supremacist movement, as young men danced to religious tunes, filming the rituals on their phones. Local activists installed a temporary idol of the goddess as Hindu worshippers gathered in large numbers amid heavy police deployment. Foreign Ministry spokesperson says talks are ongoing with the US through Pakistan as the mediator. Iran has submitted its latest proposal comprising 14 points through Pakistan, the same news agency citing a source close to the negotiating team is reporting. Donald Trump warns Iran that the clock is ticking for a peace deal to be reached. Saudi Arabia says it has intercepted three drones after they entered its territory from Iraqi airspace. The Israeli Navy has started intercepting and capturing boats from the global Samud flotilla in the international waters in the Mediterranean Sea. The flotilla is seeking to break Israel's blockade of Gaza by carrying aid to Palestinians, directing migrants to pay for illegal channel crossings using a network of UK-registered businesses, a BBC investigation has found. BBC secretly filmed staff at a shop in southeast London, telling an undercover researcher that nearly £3,000 in cash could be deposited with them and sent to a smuggler in France. The three-month investigation gives insight into how smugglers appear to be using UK companies' bank accounts to facilitate small boat crossings, something a leading expert in criminal finance told BBC he had not seen before. It is set to tighten waste carrier licenses by introducing stricter regulations aimed at preventing illegal dumping and rogue operators. Key changes include identity and criminal record checks for applicants moving away from the current online registration system. Custodial sentences of up to 5 years for those involved in illegal waste transportation. The new system will require waste carriers to demonstrate their qualifications with permit numbers displayed publicly. Action is due to take place as London Underground drivers walk out in a dispute over the voluntary introduction of a four-day week with condensed hours. Members of the Rail, Maritime and Transport voted to oppose the changes. The union says it continues to seek a negotiated settlement with Transport for London. TfL described the strikes, which start at 12 on Tuesday, as disappointing and said drivers can remain on a five-day working pattern. Arun Rai made history as the first Englishman to win the US PGA Championship since 1919. He achieved this remarkable feat by finishing with a score of 5 under par, 3 strokes ahead of John Rahm and Alex Smalley. Rai's victory marks a significant milestone in golf history as it endorses a 107-year drought at this prestigious event. Action against parents are being introduced to tackle youth crime. The UK government has introduced several measures to tackle youth crime through early intervention and tougher action against parents. These include new youth intervention courts, parenting orders, strengthening youth rehabilitation orders, reducing custodial sentences. For the parenting orders, these can compel parents or guardians to address their child's behaviour, including attending counselling or guidance sessions offers penalties such as fines. New youth intervention courts will bring together judges, youth justice services, and specialist support to tackle the drivers of offending and provide intensive supervision and tailored interventions. That concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
2: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Washington ne Tehran ke liye 5 sakht sharait aayid kar di hain. ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरानी और अम्मानी तकनीकी टीमों ने गुज़श्ता हफ्ते अम्मान में मुलाकात की है। इसराइली बहरिया ने एक बार फिर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला को रोक लिया है। चीन ने अगले 3 साल के दौरान अमरीका से 17 अरब डॉलर की जरी मसनूआत खरीदने का वादा किया है। UAE में निजी कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है और सऊदी वजारत हज उमरा ने आइंदा उमरा सीजन के आगाज से मुतलिक अहम तारीखों का ऐलान कर दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। इसराइली बहरिया ने एक बार फिर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला को रोक लिया है। इमदादी तंजीम की जानब से बताया गया है कि इसराइली फौज की स्पीड बोट्स ने फ्लोटिला में शामिल कई कश्तियों को घेरे में ले लेने के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटिला का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इमदादी तंजीम का कहना है कि उनका ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर मौजूद इमदादी कारकुनों से राबता मुनकता हो गया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी और अम्मानी तकनीकी टीमों ने गुज़श्ता हफ्ते अम्मान में मुलाकात की। ईरानी और अम्मानी टीमों ने अबनाए हरमुज में महफूज बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर बातचीत की। अबनाए हरमुज मैकेनिज्म के लिए ईरान अम्मान समेत तमाम फरीकैन के साथ मुसलसल रबते में हैं। UAE समेत खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में निजी कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है। बयान में बताया गया है कि पहली तारीख के बाद तनख्वाहों की अदायगी सिस्टम में ताखीर तसव्वुर होगी। वर्कर्स की तनख्वाहों में ताखीर पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने आयद होंगे। नई पॉलिसी सिर्फ प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगी, सरकारी इदारों पर इसका नफाज नहीं होगा। सऊदी वजारत हज उमरा ने आइंदा उमरा सीजन के आगाज से मुतलिक अहम तारीखों का ऐलान कर दिया है। उमरा जायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे, जहां उमरा वीजों का इजरा 31 मई 2026 से शुरू किया जाएगा। वजारत हज उमरा का कहना है कि नुस्क ऐप के जरिए उमरा इजाज़त नामे 1 जून 2026 से दस्तयाब होंगे। सऊदी अरब से ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2027 मुकर्रर की गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिना अमन अमल के तनाजर में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी हैं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ किया है कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन अमल को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। अमेरिका ने ईरान के मुजमिन असासों में सिर्फ 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर की है और लिबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुजाकरात पर जोर दिया है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकी प्रेसिडेंट के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें चीन ने अगले 3 साल के लिए अमेरिका से 17 अरब डॉलर की जरी मसनूआत खरीदने का वादा किया है। दूसरी जानब रशिया और यूक्रेन के दरमियान 200 से ज़ायद कैदियों का तबादला हुआ है। दोनों मुल्कों की जानब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ तय पाने वाले माहदे के तहत इस माह के शुरू में 1,000 फौजियों के तबादले पर इतफाक किया गया था। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
3: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
4: Coming up next, A Rise to Success with Sister Jihad. This is Inspire FM.
5: Inspire FM.

0: अब अगली बात हम करेंगे एहतिना में हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूं, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, और जब वो आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है और एक और पहलू से दो कम्प्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कंप्लीटली अलग चीजें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगो, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो। आपने सीख लिया एक दफा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मजीद और इल्म सीखें और मजीद सीख लेंगे, उसके बाद मजीद और फिर मजीद और मजीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मजीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, पीएचडी तक पहुंच गए। जब पीएचडी में पहुंचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहल से जब इंसान गुजरता है ना, तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज़्यादा इल्म है, वो आप उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है। वो एक दफ़ा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है। यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा कभी ऊंच कभी नीच, कभी ज्यादा कभी कम, कभी आगे कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो। मेरा
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उनमें बैदी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिरात अल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता वैली था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान हैं और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं, पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पर चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पर चल रहा हूं और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पर चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इज इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। वापस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही है, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पर हम चलें तो हम क्या होते चले जाएँ? ऊँचे। अच्छा, ऊँचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फर्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नजर आती है, उसको बहुत पीछे की नजर आती है, उसको वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नजर नहीं आ रही, उसको नजर आना शुरू हो जाता है।

0: वो उसकी उसका जो मंजर है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुंचे हुए ना, वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहता है मुझे ये नजर आ रहा है, कहता है क्या पागल वाली बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में, पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है बता, क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा, उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नज़र को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहां तक मैं, जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुप जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइज विल रियली एंजॉय दिस सेशन, ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़े हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस्सिरात अल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा जिक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है, क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईमन अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनआम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा। या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया, इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी, वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है, इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी सवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पर चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहब में क्या हुआ बताए, हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग, उन पर 100% डिपेंड करते हैं, ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखें, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं हैं? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर बाकी वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं था वो तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में है, वो सब माजी में है, उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदतमंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानि उनका एक खास मकाम है, वो उस मकाम पर वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है। अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और यह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे। तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा, सीरत में तो मुझे ये मिल रहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। यू नो एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने। ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा खास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीन अनअमत अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और यू नो अपने बुज़ुर्गों की और अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलक़ात में, मैं जब यंग नौजवान था तो कुछ हलक़ात में कोई बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछ लूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत में तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है? जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में। सिरात लदीना आराम था नहीं, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं हैं। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हम मैं आपके फ़ायदे के लिए, आप मेरे फ़ायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीज़ी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाज़े खोले, और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फ़हम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल, उनने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ, वो बात कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन है, और बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतीजे पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुजमर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम। फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमत अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में फ़ाउलाइका अल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीका, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अंबिया की बात को सच माना, शुहदा आप जानते हो शुहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब जिस तरह इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहाँ से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद। यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरात-ए-लज़ीन हदैतहुम के बजाय सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Be good to yourself by being good to others. Be inspiring. Inspire FM 105.1.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1pm to 9pm for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your goal, then break it down, chapter by chapter, wear the crown. Every tick is a victory sign, step by step, the win is mine. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.